कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.

ईशन वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन। बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। आप सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है प्रोग्राम भजन यात्रा में। और भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म बनारस, उसी फिल्म से ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में अबकी बार ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है आज की सोमवार की सुबह के प्रोग्राम में, प्रोग्राम भजन यात्रा में।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई अनुराधा पोटवल जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

और लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

जिसमें आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में चलिए प्रोग्राम में श्री शिव चली साहब इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में आप सुनते हैं।

सौ प्रदीप की आवाज में ये सुंदर सा शिव चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: सुन वालो आरती भजन अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। आरती भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। यहाँ तक रेडियो SBS के जरिए आज सोमवार की सुबह की प्रोग्राम में भजन यात्रा प्रोग्राम सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गए है। आप सभी सुन वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Oko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Oko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Super

रेडियो SBS की जरिए गाना बस पेश की गई सोनू निगम की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का नाम, और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अबकी बार उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में चले ये गाना की ओर और गाना का बोल है मुझे इश्क हुआ।

0: रेडियो SBS के जरिए अनुराधा पोर्टवेल जी के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। सुनवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं इश्क विश्क फिल्म का गीत की ओर। कुमार सानू एंड कविता, ये कहिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है इश्क विश्क फिल्म का नाम।
1: आंखों ने

पास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है, चलिए प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है शान और श्रिया जी की आवाज में

शान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से श्रेया जी की ओर और अब की बार ये गाना

जब वी मेट फिल्म का नाम उसी है। फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई। हमारी सभी सुनने वालों जो खास तौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अलका याग्निक हरि हरन, अब की बार प्रोग्राम में गाना जो पेश किया जा रहा है

हरी हरन की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं, आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। कुमार सानू

रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। वेबसाइट radio.sbs.com.au नीरज और श्रिया जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुनने वालों, आज सोमवार का दिन है, 31 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। 9:00 प्रोग्राम में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है। बारिश का मौसम है, बाहर की ओर देखा जाए समय समय पर दूर दूर से बारिश हो रहा है, फिर भी आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है।

की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हर सुबह ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा

गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। तो हम आपको ले चलते हैं पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर, जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बारिश का मौसम है, सोमवार का दिन, 31 तारीख अगस्त महीना का आखिरी दिन, और यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम बस पेश किया जा रहा है।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में ये गाना लता जी की आवाज में आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है पकीसा।

पुरानी फिल्म परस मनी का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में। अभी आपने सुना वो जब याद आए, रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। परवरिश फिल्म का नाम 1958 का फिल्म है।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, तलत जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है।

कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हम आपको ले चलेंगे अगली बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में। मनोज कुमार का फिल्म पहचान, उसी फिल्म का ये गाना। 1970 का फिल्म है, 1973 का फिल्म। मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना पेश की गए पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा के बाद चले प्रोग्राम में लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

में फिघलता आसमान फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर एन लता जी के आवाज में फिल्म प्रेम बंधन का गीत पेश किया जा रहा है।

एक हसीना दो दीवाने फिल्म का नाम, दो कदम तुम भी चलो। रेडियो वेस्ट में इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। गाना का बोल है हम बने तुम बने, बने हैं बस एक दूजे के लिए।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहडुत्रे हॉलैंड से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में सालों से बस पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार और अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म जमीर की ओर।

आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गाना और फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए, फिल्म का नाम जहरीला इंसान। आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए मोहम्मद रफी एंड लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद रफी

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था सबक, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलेंगे। अगली बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार की आवाज में गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर एंड लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम होगा

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था रूप तेरा मस्ताना। चलिए आज की प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रोमित है। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म दारिंदा की ओर। यशुदास और कंचन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कीर्ति, कीर्ति, आखिर मैंने तुम्हें पाई लिया। कीर्ति, मैंने तुम्हें पाई लिया। तुम नहीं जानती कीर्ति, तुम्हारे लिए मेरी आत्मा कितने सालों से भटक रही थी। तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक एक पल ऐसे गुजरा है जैसे सदियां गुजर गई हो, हजारों साल बीत गए हो। लेकिन कीर्ति, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता।

0: Nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पोरवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हमारा आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार एक गाना सोनू निगम की आवाज में द फिल्म मदहोशी पेश किया जा रहा है।

निगम के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है वजीत और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

सुनने वालों की सेवा में। चलिए कुमार सानू और अलका जी की ओर मैं खिलाड़ी तू अनारी फिल्म का नाम अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है

0: आसरो भी देखिए, गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया, रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है।
1: कल तक मुझे थी ना खबर।
0: अब की बार सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में गाना।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गए, मैंने दिल तुझको दिया। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों आपके साथ रेडियो SBS का प्रोग्राम इस वक्त

CFM. सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। अरिजीत सिंह एंड सुनिधि

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए फिल्म शोबिस की ओर है। शान और अब की बार श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

शुरिया की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। द फिल्म शोबिस, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामकाज के लिए। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60। अनुराधा पोटवाल और कुमार सानू प्रोग्राम में, फिल्म का नाम शुक्रिया।

अली खान और साथियों की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हजरों भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक बार फिर से राहत जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा श्रेया घोषाल।

राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना आज के प्रोग्राम में अलका जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है सोल्जर।

0: में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुने लाइव के जरिए ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में
1: तुझसे अब मुझे मरना है
0: राहत जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

इश्क गए मेरा इंतजार करना, अरमान मलिक की आवाज में। जो फिल्म खुदा हाफिज, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अगली बार ये गाना की ओर। गाना कबूल है शुक्रिया। सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम

चलिए कैनबिस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना।

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और जिस तरह से भी आप चाहे हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और वो भी इंटरनेट के सहारे। और इसी तरह से भी बहुत सी सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं।

सानू कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मेरे मेहरबान फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल प्रोग्राम में।

पास में ये गाना पेश किए गए इंसा फिल्म का नाम रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना ये खास गाना। एक बार फिर से उदित नारायण होगा प्रोग्राम में, साथ में होगा अलका और फिल्म का नाम इश्क है तुमसे।

तभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम इश्क है तुमसे, इश्क है तुमसे फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई। खूबसूरत नगमे आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, फिल्म नाराज़।

फिल्म का नाम। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6060। इसी तार की नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं फरमाइशी के बारे में, आपकी तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम के बारे में।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। चलिए गाना शमशाद बेगम और आशा जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

नींद हमारी है, ख्वाब तुम्हारे, फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। जरूर आप सुनते ही रहना मुकेश और गीता दत्त के आवाज में।

उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में। ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मोहम्मद रफी एंड आशा जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुन

वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए आपकी हर एक कामों काज के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में चल चल रे मुसाफिर चल।

0: प्यार को।
1: मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में फिल्म में फिर वही दिल आया हूँ, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा जी की आवाज में ये गाना बस सुनते ही रहना।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

भी सरफिरा तू भी सरफिरीज, गजोंग दोर सिद्धार्थ माधव, नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम द फिल्म कट्टी पट्टी एंड द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम द टाइटल सॉन्ग गजोंग दोर अलका याचनिक एंड सोनू निगम।

जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक तू ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता था। इस वजह मधुर कुमार सानू है बस अवध अवध फिल्म दिलवाले। हाँ मतलब फेरदर मैथ बजरंगी भाईजान। खसा मधुर जावेद अली कौम तू जो मिला।

0: अभी तक है हसी और मैं जवान, खुद पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
1: ए मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में, और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना। KK की आवाज़ में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से, भीगी भीगी सी है रातें।

मुझे रंग दे, इसको सुनो तो आशा भोसले एंड कॉम आउट द फिल्म तक्षक एंड आउट द एल्बम दुनिया जी से कहते हैं कम थो सो दो जगजीत सिंह। कल चौदहवीं की रात थी।

जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह मैथ। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्राख्त लीजिए सोसा हो दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो खुसा हो दो जगजीत सिंह एंड कॉम दे सिकेर आई द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स
2: फ्रॉम हॉलैंड। आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमा हुए पूरे दिल के। इस आयुध फिल्म पर रिंदा खजांदोर, आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर। खजांदोर हेमंत कुमार कॉम दान आयुध फिल्म खामोशी, फिया रेडियो SBS, तुम पुकार लो।

दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आपने सुना फिल्म रोजा से। और अगला गाना है जय जय शिव शंकर फिल्म वॉर से। ये एक फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का। तुम तक न दिखे

तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना आपने सुना जन्नत दो से। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जिन्नी विद सनी से, मिक्का सिंह, नेहा कक्कर और बादशाह की आवाज में। आप सुनिए सावन में।

बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म वत से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है चाइना टाउन से। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा।

पैसा ये पैसा आपने सुना टोटल धमाल से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है जाने तू या जाने ना से। राशिद अली की आवाज में आप सुनिए कभी कभी अदिति, जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट
2: जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

0: dacht dat het meegaat.
1: Photography is a hobby, Darshan, not a career. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

0: tanto que venga.
1: फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.